0: ascendió un drama de Dios, existiendo nuevas amigas.
1: एक नंबर को पासाई दुई नंबर बसी का तीन नंबर मागते

0: அப்பே என்னையே பாட சொல்லி ஒஸ்கோட்டி பி போக்குறேன் இண்டியோ நீக்கே அவத்தார் மாஸ் ஆகுத்தோ
1: கட்டை பரி லைலை கொஸ்கு டிவி போக்னோனி பிட்டி ஆப்னே டிவி பிக்ரியோ அனி பனவுனே ஜனல் லாகே கொட்டி பனவுனே புக்கா உலாட்ட ஓயினே
0: தேத்தி கூட பணம் சிந்தாணம் சதர் முகாம் சரிக்கோட் பாட்ட சரி ஹேங் ஜான பாட்டமா ரமரை சௌதரி இலெக்ட்ரோனிக்ஸ் மாத திம்ரோ பிக்ரிக்கு டிவி மாத்த கி மொபைல் ஘டி சபை பண்ணி ஆல்சி சக்கி கொண்டு
2: अब आउनुहोस् हाम्रै चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स मा 32 इन्च देखि माथिको एलईडी किन्दा दिसौं सिधैमा
3: यहाँ फ्रिज डी फ्रिज एलईडी एलसीडी टीभी मोबाइल साउन्ड सिस्टम सुपथ मूल्यमा पाउनुका साथै सबै प्रकारका टीभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरू मर्मत गरिन्छ। यसका साथै विवाह गोष्ठी सेमिनार व्रत बन्ध र अन्य कार्यक्रमका लागि साउन्ड सिस्टम भाडामा पनि पाइन्छ।
4: टीभी मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मत गर्ने ट्रेनिङको पनि सुविधा छ। यसमा विशेष गरी 5 जनाको समूह बनाएर आएमा 1 जनालाई छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
5: प्रोप्राइटर नरेन्द्र चौधरी चौधरी इलेक्ट्रोनिक्स चरीकोट चरीख्याङ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9844391042 र 9844061814।
2: दुलिखेल अस्पताल दुलखा अस्पताल दुलखाको सूचना।
6: धुलेखेल अस्पतालद्वारा संचालित दोलखा अस्पतालले विभिन्न सेवा संचालन शुरू गरिसकेकाले समयमै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराई मौकाको फाइदा उठाउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ।
2: हाम्रा सेवाहरू
6: शनिबार बाहेक बिहान 9 बजेदेखि अपरान्ह 4 बजेसम्म ओपीडी सेवा,
2: 24 घण्टा आकस्मिक सेवा,
6: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, इन्डोस्कोपी कल्चर, मानसिक स्वास्थ्य जाँच तथा परामर्श सेवा,
2: डिजिटल सीआर सिस्टम द्वारा एक्सरे सेवा र एनआईसीयू सेवा,
6: 24 घण्टा आकस्मिक उपचार तथा बिरामी भर्ना,
2: 24 घण्टा फार्मेसी सेवा,
6: आधुनिक उपकरणहरू तथा अपरेशन थिएटर सहित सञ्चालित अस्पतालमा महिला तथा प्रसूति विशेषज्ञद्वारा प्रसूति जाँच तथा अपरेशन,
2: हार्जुनी सम्बन्धी विशेषज्ञ उपचार सेवा, विशेषज्ञ चिकित्सकबाट दन्त सेवा,
6: हार्ड चोनी नसा सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा हड्डी भाँचेका, हड्डी खिएका, नसा च्यापिएका बिरामीहरूको लागि अपरेशन सहितको सेवा अन्तर्गत पाता राख्ने तथा निकाल्ने सामान्य शल्यक्रिया र फिजियोथेरापी सेवा,
2: ईसीजी, भिडियो एक्सरे तथा प्रयोगशाला जाँच,
6: रगत सम्बन्धी मृगौला, मुटु र कलेजोको जाँच, थाइरोइड जाँच,
2: दिशा पिसाब खकार परीक्षण गरिनुका साथै वीर्य जाँच र परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु स्याहार सेवा सम्बन्धी परामर्श तथा अस्थायी साधन वितरण,
7: विशेष मेसिनद्वारा नवजात शिशुको जन्मजात श्रवण समस्याहरूको परीक्षण तथा पहिचान, जिल्लाकै क वर्गको सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन।
6: अन्य थप जानकारीको लागि
7: सम्पर्क नम्बर 0494-12-020।
2: धुलिखेल अस्पताल दोलखा अस्पताल दोलखा।